भारी कामयाबी जो बुनियाद आहे। मुनज़िम अंदाज़ में कमु करण सां न रुगो वक़्त जी बचति थींदी आहे पर कम जे मयार में बि बहितरी ईंदी आहे। इंसान परेशानियुनि खां बचंदो आहे, पंहिंजा मक़सद आसानीअ सां हासिल थी वेंदा अथसि ऐं हर क़दम सोचे सम्झी खणंदो आहे। जॾहिं त बेतरतीबी, सुस्ती ऐं लापरवाही असांखे नाकामी, मायूसी ऐं वक़्त जे ज़ाया थियण ॾांहुं वठी वेंदो आहे। तंहिं करे अचो त अॼु खां वठी उहो अज़म करियूं त हर कमु शुरू करण खां अॻु उन जी सही रिथाबंदी कंदासीं, वक़्त जी अहमियत खे सम्झंदासीं ऐं पंहिंजूं ज़िमेवारियूं ईमानदारीअ सां निभाईंदासीं। यादि रखो मुंहिंजा मिठा साईं, त मुनज़िम ज़िंदगी न रुॻो कामयाबी आणे थी पर इंसान जी शख़्सियत खे बि बहितर बणाए थी।

इश्क हो चर्चो न हो रोशो न हो तो मुझे मिठा सही तमाम प्रोग्राम में शामिल एसएमएस करने तरीकेकार सवलो है आसान है पाँच मोबाइल फोन की राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो एम आर ओ लिखो स्पेस क्योंकि लिखो पाँच नालो पाँच गोठ या शहर जो नालो लिखी कर मोकलो असान 888-1

प्रोग्रामी दोस्तनि जा मैसेजिस बि शामिल कंदा हलूं ऐं असां सां गॾु आहे असांजो प्यारो भाउ आई अब्दुल रहीम फ्राम सखर अदा अब्दुल रहीम कहिड़ा हाल आहिनि अवांजा ठीकु आहियो त भई सही आहे अवांजी उमिरि तरक़ी अरब करीम तव्हां सभिनी मुंहिंजनि भाइरनि ऐं भेनरुनि आख़िर ख़िरत कई हूंदी ऐं तव्हांजे लाइ स्पेशली असां खोड़ सारी दुआऊं कंदा आहियूं छो जो तव्हां असांजे प्रोग्राम में हमेशह शामिलु थींदा आहियो मोहबत भरिया मैसेज कंदा आहियो ऐं मौला ख़ुशि रखंदो तव्हांखे अदा जन चवनि था अस्सलामु अलैकुम अदा साईं कैसे हो त वालेकुम अस्सलाम भाउ मुंहिंजा मां बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां अदा जन खे शो पसंदि अचे पियो ऐं चवनि था त हीउ शो नाइस आहे महिरबानी ऐं अदा जन दुआ बि कनि पिया ऐं चवनि था मैडम सुमेरा कब आएगी त अदा मुंहिंजा साईं बिल्कुलु मैडम अची वेंदी कंहिं पंहिंजी ज़ाती मसरूफ़ियात सबबु फिल वक़्तु असांजे जी एफ एम नेटवर्क खां डिस्कनेक्ट लॻी पई आहे ऐं जीअं हुनजी मसरूफ़ियात ख़तमु थी वेंदियूं त वरी हू असांजे सथ में शामिलु थी वेंदी हुनजे लाइ कुझु इंतज़ारु अञा कयो आहे ऐं कुझु तव्हांखे अञा वधीक इंतज़ारु करिणो पवंदो महिरबानी आहे अदा अब्दुल रहीम तव्हांजी ऐं कुर्ब तव्हांजा तव्हांजूं ॾिनल मोहबतूं हमेशह हमेशह जे लाइ यादि रहंदियूं ऐं असां सां गॾु आहे उनड़ चोखा आसिफ़ पंवर बशीर पंवर ऐं चवनि था अदा अस्सलाम अलैकुम कहिड़ा हाल आहिनि भाउ मुंहिंजा मां बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां तव्हांजूं दुआऊं मूंसां गॾु आहिनि ऐं अदा असां बि तव्हांजे लाइ दुआ घुरियूं तव्हांखे स्पेशली मां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो मूंखे ईअं लॻी रहियो आहे त तव्हां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे हिन शो में शामिलु थिया आहियो जंहिंजे लाइ लख कुर्ब तव्हांजा ॻोठु मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खां मोहम्मद हारून संदीलो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे अदा हारून कहिड़ा हाल नवां जा ठीकु आहियो उमेदु आहे त तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदा अदा जन चयो आहे रऊफ़ मक्सीअ जो असांखे सॉन्ग ॿुधायो त हाज़िर मुंहिंजा मिठा रऊफ़ मक्सीअ जो सॉन्ग अव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं त मुंहिंजा साईं अहिड़े तरीक़े सां तव्हां बि असांजे शो में शामिलु थी सघो था ऐं शामिलु थियण जो तरीक़ेकार हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त पंहिंजे मोबाइल फ़ोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो एम आर ओ लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जे शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888

0: अमीर चरण जो खूबसूरत आवाज़ ए अवान जो सुंदर सवातू तो मुझे मिठा सही दोस्तों जो मैसेजेस भी गर्व उ भी शामिल कह हल्दी पर इन वक्त थो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो हल्दी ब्रेक की तरफ ब्रेक का वापस इंदी वापस अची कर बुधाईंदे अवज पसंद की चूंड मौसीकी तवजा मैसेज पे प्रोग्राम की सूह बढ़ाई
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: ढाडो सुठो
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

0: अकेरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: शामिल कंदा हलूं उस्ताद अहमद बख्श वीसर विलेज दंगल खान वीसर खां चवंदा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बेहतर चल रहा है और म्यूजिक सिलेक्शन फैंटेस्टिक है। महरबानी अदा अल्लाह से तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे ऐं तव्हांखे असांजो प्रोग्राम पसंदि अचे पियो, असांजो म्यूज़िक सिलेक्शन तव्हांखे पसंदि अचे पई, उन जे लाइ तमामु घणा असां तव्हांजा शुक्रगुज़ार। गोठ दूरो भेण खां शौकत अली भेण पंहिंजे प्रोग्राम ते पियो, नादर अली भेण ऐं अली गुल भेण अदा शौकत नादर ऐं अली गुल कहिड़ा हाल आहिनि अवांजा? ठीकु आहे, उहो तबियत सही आहे अवांजी, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखंदो, आबाद हुजो। मुंहिंजा मिठा साईं, पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो, स्पेशली मुंहिंजे तरफ़ खां तव्हांखे खोड़ दफ़ा भलीकार वेलकम ऐं ख़ुशि हुजो। अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असांजे शो में शामिल थियो था, मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थिए थी। कुर्ब तव्हांजा अली नवाज़ इस्लामी पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं चवनि था त शो तव्हांजो ब्यूटिफुल आहे, त महिरबानी मुंहिंजा मिठा ख़ुशि हुजो। स्पेशली मां तव्हांखे भलीकार चवां थो, ॻोठ सालिह शरह खां मिठू खान शर पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधे पियो, हुन सां गॾु आहे अली गुल शर, अब्दुल इशाक, अब्दुल इसाक शर ऐं चवंदा अदा सलाम क़बूल पवन, त वालेकुम सलाम भाउ मुंहिंजा, क़बूल पिया तव्हांजा सलाम मुंहिंजे अखियुनि ते। ऐं चवनि था त असांखे अनवर विस्तड़ो ऐं नूरमोहन सोलंगीअ जो आवाज़ में कलाम ॿुधायो, हाज़िर मुंहिंजा मिठा ज़रूरु।

रऊफ मक्सी जी खूबसूरत आवाज़ ही तव्हांजो समात हूंदो मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां बि असांजे शो में शामिल थी सघो था अहिड़े ई तरीक़े सां जहिड़े तरीक़े सां असांजा ॿिया दोस्त असांजे शो में शामिल थिया। अदा हारून संदीले जी फरमाइश ते ही सॉन्ग असां प्ले कयो आहे, अदा इंजॉय कजो, ॿुधजो मुंहिंजा मिठा साईं, फीडबैक ज़रूरी।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: माँ हिंदू

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: वजीर आजम शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे ते तरक्की दे छी। तरक्की बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर मुकर्रर। आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे ते तरक्की मिलण ते वजीर आजम पारा वादायूं नयूं जिम्मेवारियूं मिलण ते नेक ख्वाहिशन जो इज़हार भी कयो। अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छड़िया। चार शहरी शहीद खोजस्तान एवाज बंदर अब्बास करमान कश्म ते हमला कया व्या। सेनेट का मौजूद ईरान के दिफाई सलाहतन ते हमला कया व्या। ईरान जो भी अमेरिकी असासन एडन ते जवाबी वार बहरीन उर्दन में अमेरिकी एडन के निशानो बनाया व्यो। पासदार इनकलाब मौजूद हमलन में अमेरिका जो वडो नुकसान थो है।

अमेरिका ईरान में छिकताण बाद आलमी मंडी में तेल वधीक महांगो थी वयो। आलमी मीडिया मौजूब ईरान ते अमेरिकी हमलन में तेजी बाद कच्चे तेल की कीमत $100 फी बैरल का भी वधी वई है। ब्रेंट कच्चो तेल फी बैरल $101 है। मरबान कच्चो तेल $107 फी बैरल विक्रो थी रो है।

कहें मुल्क जा असा मंजमंद करे हर जाने तौर इस्तेमाल करण जा नतीजा खतरनाक थी सकन था। ईरानी परदेही वजीर अब्बास सिराक्ची चयो आहे त ट्रंप जे बयान ते खुश थींदड़ समझी वठन त हुकूमतन बेन मुल्कन जा असासा मंजमंद करण शुरू कया त सभिनी जो नुकसान थींदो। सदर ट्रंप ईरानी असासा नुकसानन लाइ इस्तेमाल करण जी धमकी डि॒नी आहे।

ख़तरनाक थी सघनि था। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त ट्रंप जे बयान ते ख़ुशि थींदड़ सम्झी वठनि त हुकूमतनि ॿियनि मुल्कनि जा असासा मंद मंद करणु शुरू कया त सभिनी जो नुक़सान थींदो। सदर ट्रंप ईरानी असासा नुक़साननि लाइ इस्तेमालु करण जी धमकी ॾिनी आहे।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मुंहिंजा मिठा साईं, ज़िंदगीअ में कामयाबी हासिल करण जे लाइ सिर्फ़ महिनत ई काफ़ी न आहे, पर सुठी सोच ऐं सुठी गुफ़्तगु बि तमामु अहम आहे। जेकॾहिं हर हाल में मुस्बत सोच रखे ऐं ॿियनि सां सुठे नमूने ॻाल्हाइजे त न रुॻो माण्हुनि जूं दिलियूं खटे सघजनि थियूं, पर पंहिंजी ज़िंदगीअ में बि तरक़ीअ जा नवां दर खोले सघजनि था। मुस्बत सोच इंसान खे मायूसीअ खां बचाए थी। जेकॾहिं को मसइलो साम्हूं अचे तॾहिं नाउमीद थियण बदिरां उन जो हल ॻोल्हणु घुरिजे। अहिड़ी सोच इंसान खे मज़बूत बणाए थी ऐं अॻिते वधण जो हौसलो ॾिए थी। साॻी तरह मिठा लफ़्ज़ ऐं सुठो इख़लाक इंसान जी शख़्सियत जो ज़ेवर आहिनि। हिकु सुठो जुमिलो कंहिंजे दिलि खे ख़ुशि करे सघे थो, जॾहिं त सख़्तु लहिजो दिलनि में फ़ासिला पैदा करे सघे थो। उन करे हमेशह अदब, एतराम ऐं मुहबत सां ॻाल्हाइणु घुरिजे। यादि रखो, जेको माण्हू सुठो सोचे थो, सुठो ॻाल्हाए थो ऐं नेक अमल करे थो, कामयाबी उन जो मुक़दर बणिजी वेंदी आहे। अचो त अॼु खां उहो अहद करियूं त हर हाल में मुस्बत सोच इख़्तियार कंदासीं, ॿिए सां सुहिणे इख़लाक सां पेश ईंदासीं, पंहिंजी ज़िंदगीअ खे बहितर बनाइण जी कोशिश जारी रखंदासीं।

0: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छड़ी आहे हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो
1: त पोई छा अन्या तई फकीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई थई
0: न यार छा वाकई फायदो करे थी
1: बिल्कुल अदा कुदरती जुजन सा तैयार कयल फकीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंदा ते जल्दी जज़ब थी सूर सोडियम जिस्म जी नसन जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी चेल जो सूर हुजे गोडन जो सूर कंध ऐं कुलन जी तकलीफ़ या वर्जिश खां पोइ छिक हर हालत में बेहतरीन साथी फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
0: इस्तेमाल कीअं कजे
1: रुगो मुतासिर हंदा ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुध जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा
0: वाह पोइ अॼु ई वठी ईंदसि
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

तव्हांजा वेठासीं कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि, उन्हनि खे बि पंहिंजे प्रोग्राम जी सूंहं बणाईंदे हलंदासीं। तव्हांखे मोहबत ऐं प्यार में जा ही मैसेज असांजे मोकिलिया आहिनि त असांजो बि इहो फ़र्ज़ु थिए थो त असां उन्हनि मैसेजनि खे प्रोग्राम में शामिलु कयूं। त अदा 78 मोरीअ खां राजा हमीर चंद पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, ऐं किशोर कुमार, पवन कुमार ऐं टेलर मास्टर चए थो आज छुटी पए। अच्छा ठीकु आहे, तव्हां पहिरियों मैसेज कयो, मां तव्हां खां टेलर मास्टर जो पुछो त तव्हां इहो चयो त उहो अॼु छुटीअ ते आहे, अच्छा हुनखे तव्हां मोकल ॾिनी आहे ऐं बरसाती मौसम खे उहो इंजॉय करे रहियो आहे, महिरबानी आहे। ऐं तव्हां फौज़िया जे सॉन्ग जी फरमाइश कई आहे त फौज़िया जो सॉन्ग मां प्ले करे छॾियो आहे ऐं तव्हांजे मैसेज पढ़ण खां सवाइ, अच्छा उहो तव्हांजे नाले अदा ठीकु हुजो, ख़ुशि हुजो ऐं क़बूल कजो। ऐं चवनि था दादा मीरपुर ख़ासि मींहुं बारिश तो नहीं हुई है मगर मौसम अच्छा है। त अहिड़ो ई साॻी सूरत हाल आहे मोरे में, मौसम सुठड़ी आहे, हफ़्स वारी मौसम आहे पर बरसाति नाहे पई। राति चंद कणियूं पयूं हुयूं ऐं उहे सिर्फ़ु चंद कणियूं ई हुयूं ऐं हिन वक़्तु सख़्तु बरसाति जी सॼी सिंध खे ज़रूरत आहे। त तव्हां सभिनी खे चवंदासीं त तव्हां वधि मां वधि दुआगो थियो अलाह जे दर ताला ताला ख़ैर जूं बरसातूं सिंध जे मथां वसाए त जीअं सिंध में जेका पाणी जी खोट जेका फ़सलनि खे हिन वक़्तु तमामु घणी ज़रूरत आहे पाणीअ जी न उहा पूरी थी वञे ऐं उन खां पोइ जेके जानवर आहिनि उन्हनि जे लाइ बि पाणी जमा थी वञे, जेके पखी आहिनि उहे बि बरसाति जे मौसम खां पोइ पाणी पीअंदा आहिनि ऐं बरसाति में इंजॉय कंदा आहिनि। त सभिनी खे बराबरि जेतिरो मौक़ो मिली वञे त असां बि दुआ गोयूं, तव्हां बि दुआ गो रहिजो त हिन धरतीअ जे मथां अलाह ताला पंहिंजे रहमत जा ककर ज़रूरु वसाए। त महिरबानी अदा किश्वर तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थिया आहियो। अदा अब्दुल रहीम जो मैसेज अची चुको आहे, चवे थो मास्टर मंज़ूर जे कलाम असांखे ॿुधायो त पहिरां मास्टर मंज़ूर ऑलरेडी मां प्ले करे चुको आहियां ऐं उमेदु आहे त तव्हां उहो ॿुधो बि हूंदो ऐं सॉन्ग तव्हांखे पसंदि बि आयो हूंदो। हिन वक़्तु बशीर जतोई जे आवाज़ में हिकिड़ो सॉन्ग आहे मुंहिंजे प्ले लिस्ट में, अचो तव्हांखे उहो थो ॿुधायां।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हनि में तव्हां सभिनी मुंहिंजनि मिठनि प्यारनि भाइरनि ऐं भेनरुनि खे असां भलीकार चऊं था त मुंहिंजा मिठा ताईं प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ जो बि वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते। वञण खां पहिरीं हमेशा वांगुरु तव्हांखे चवंदासीं त पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखिजो, पंहिंजे दोस्तनि जो, मिटनि माइटनि जो, पंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखिजो। जन हिन वक़्तु ॾिसो था त केतिरी असांजी सिंध खे बरसाति जी ज़रूरत आहे, बरसाति न पई पवे। उनजो सबबु ॿुधायां हिकिड़ो अथव, उनजो सबबु इहो अथव त असां पंहिंजे जेका कुदरती नेचुरल जेकी ख़ूबसूरती हुई न उनखे असां ख़तमु करे छॾियो आहे। तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन में ज़रूरु सोचिजो त असांखे हिकिड़ो वण वढण में सिर्फ़ु हिकु कलाकु लॻंदो आहे, पर उनखे ॿीहर पोखे तयारु करण में 10 साल लॻी वेंदा आहिनि। त उन जे लाइ वणनि जी वाढी बिल्कुलु बंदि कयो, पंहिंजे ओताकुनि में, पंहिंजे घरनि में, पंहिंजे ज़मीनुनि ते, पंहिंजे फसलनि में वधि खां वधि सावक कयो, वण पैदा कयो, वण रखो त ईंदड़ जेके असांजूं नसलूं आहिनि उहे इन क़िस्म जी गर्मी, हिन क़िस्म जो हब्स ऐं हिन क़िस्म जी मौसमी तब्दीलियुनि खां जेको सॼी दुनिया हिन वक़्तु परेशान आहे त उहे उन परेशानी खां बची पवंदा। मतिलबु चवण जो त वण तव्हांखे ज़रूरु खाइणा आहिनि। उनखां पोइ पंहिंजी नियाणियुनि खे ऐं पंहिंजे पुटनि खे दीनी दुनियावी तालीम ज़रूरु ॾींदा कयो। जुमे जो भलारो ॾींहुं आहे, हुन में दुरुद पाक कसरत सां पढ़जो, निमाज़ ते वञिजो ऐं असांखे पंहिंजे ज़रूर यादि कजो। त ॿिए प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह वाही अलह निगहबान।

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Ducks Ointments.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा के फोर स्टार जनरल के अहदे ते तरक्की ॾेई छॾी तरक़ीबा लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्टेट जे कमांडर मुक़रर आमिर रज़ा के फोर स्टार जनरल के अहदे ते तरक़ी मिलण ते वज़ीर-ए-आज़म पारां वाधायूं नयूं ज़िमेवारियूं मिलण ते नए ख़्वाहिशनि जो इज़हार बि कयो ईरान इराक ज़रिए अमेरिका जी जंग बदीअ वारी आछ रद्द करे छॾी अमेरिकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा अमेरिकी अख़बार मूजिबि इराकी वज़ीर आज़म अमेरिकी दौरे तां वापसीअ बाद ईरान जो दौरो करे ईरानी क़यादत खे अमेरिका जी जंग बदी वारी आछ बाबति आगाह कयो ईरानी इख़्तियारनि जवाब ॾींदे चयो त आर्ज़ी जंग बंदी क़बूल न हूंदी अमेरिका सां ॻाल्हियुनि लाइ पहिरियां ई साल्स मौजूदु आहिनि आर्ज़ी जंग बंदीअ सां अपना हर्मज़ जो मसइलो हल न थींदो अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छॾिया चार शहरी नवाज़ बंदरमान कश्म ते हमला कया विया सेनेट खां मूजिबि ईरान जे दिफ़ाई सलाहियतनि ते हमला कया विया आहिनि ईरान जो बि अमेरिकी असासनि ऐं अॾनि ते जवाबी वार बहरीन ऐं उर्दन में अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो पासदार इनकलाब मूजिबि हमलनि में अमेरिका जो वॾो नुक़सान आहे

अमेरिका ईरान में छिकताण बाद आलमी मंडी में तेल वधीक महांगो थी वयो। आलमी मीडिया मूजिब ईरान ते अमेरिकी हमलन में तेजी बाद कच्चे तेल जी कीमत $100 फी बैरल खां भी वधीक वही थी वही है। बैरल कच्चो तेल फी बैरल $101 है। मरमान कच्चो तेल $107 फी बैरल विक्रो थी रहो है। कें मुल्क जा असासा मंझमंद करे डंड तौर इस्तेमाल करण जा नतीजा खतरनाक थी सघन था। ईरानी परडेही वजीर अब्बास सिराक्ची चयो आहे त ट्रंप जे बयान ते खुश थींदड़ समझी वठनि त हुकूमतनि ॿियनि मुल्कनि जा असासा मंझमंद करण शुरू कया त सभिनी जो नुक़सान थींदो। सदर ट्रंप ईरानी असासा नुक़सान लाइ इस्तेमाल करण जी धमकी ॾिनी आहे।

बबर लोए में मासूम बारन जे अगवा खिलाफ एहतजाज करण तां गिरफ्तार थियल सोनी पारस लियाकत जलवाणी ऐं ॿियनि खे पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत पारां पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार ॿुधणी सुभाणे ताईं मुर्तवी। अदालत चयो त गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे अदालत में पेश न कयो वियो त डी आई जी खे ज़ाती हैसियत में तलब कयो वेंदो।

0: जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध के माथे का झूमर,
4: GFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, viram fauri khatam. Aaj hi kareebi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
3: ઈરાન ઇરાક ઝરિયા અમેરિકા જી જંગ બધી વાર યાદ રદ કરે છે અમેરિકી અખબાર ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સ જી દાવા અમેરિકી અખબાર મુજબ ઇરાકી વજીર આઝમ અમેરિકી દોરે તાં વાપસી બાદ ઈરાન જો દોરો કરે ઈરાની કયાદત કે અમેરિકા જી જંગ બંધી વાળી આંચ બાબત આગાહ કયો ઈરાની અખ્તિયારનિ મુજબ જવાબ ડીંદે ચયો ત આરઝી જંગ બંધી કબૂલ ન હૂંદી અમેરિકા સાં ગાલિન લાઇ પહેર્યા ઈ સાલ્સ મોજૂદ આહે આરઝી જંગ બંધીએ સાં આપના જો મસલો હલ ન થીંદો. अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छड़िया चार शहरी शहीद खोजता नवाज बंदर अब्बास करमान कस्म ते हमला कया वया सेनेट काम मूजिब ईरान जी दिफाई सलाहतन ते हमला कया वया है ईरान जो भी अमेरिकी असासन अडन ते जवाबी वार बहरीन उर्दन में अमेरिकी अडन के निशानो बनायो वयो पासदार इंकलाब मूजिब हमलन में अमेरिका जो वडो नुकसान थियो आहे. मुल्क जा असासा मंझमंद करे डंड तौर इस्तेमाल करण जा नतीजा खतरनाक थी सघन था ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची चयो आहे त ट्रंप जे बयान ते खुश थींदड़ समझी वठन त हुकूमती बेन मुल्कन जा असासा मंझमंद करण शुरू कया त सभिनी जो नुकसान थींदो. सदर ट्रंप ईरानी असासा नुकसान लाइ इस्तेमाल करण जी धमकी ॾिनी आहे. अमेरिका ऐं ईरान में छकताण बाद आलमी मंडीअ में तेल वधीक महांगो थी वियो. आलमी मीडिया मूजिबि ईरान ते अमेरिकी हमलनि में तेज़ी बाद कचे तेल जी क़ीमत 100 डॉलर फी बैरल खां बि वधी वई आहे. बैरेंट कचो तेल फी बैरल 101 डॉलर ऐं मरबान कचो तेल 107 डॉलर फी बैरल विकिरो थी रहियो आहे. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा खे 4-स्टार जनरल जे उहिदे ते तरक़ी ॾेई छॾी. तरक़ी बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा कमांडर नेशनल स्ट्रेट जग कमांडर मुक़ररु. आमिर रज़ा खे 4-स्टार जनरल जे उहिदे ते तरक़ी मिलण ते वज़ीर आज़म पारां वाधायूं नयूं ज़िमेवारियूं मिलण ते नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार बि कयो. सदर आसिफ ज़रदारीअ सां बलूचिस्तान जे सूबाई वज़ीरनि जी बिलावल हाउस में मुलाक़ात. बलूचिस्तान में अमन अमान जी सूरतहाल ऐं तरक़ियाती कमनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल. सदर आसिफ ज़रदारी पारां बलूचिस्तान में तरक़ी जो अमल तेज़ करण ते ज़ोर भरियो. सूबाई वज़ीरनि खे अवाम सां राब्तनि में रहण जी हिदायत.

कानून टोड़ींदड़ ऐं लोह कंदड़ खे कानून जे कटहरे में पेश करण पुलिस जी ज़िमेवारी आहे। सिंध पुलिस जा जवान ऐं आफिसर बहादुरीअ सां दहशतगर्दीअ जो मुक़ाबलो करे रहिया आहिनि। कराची में सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस जी तरबियत मुकमिल कंदड़ जवाननि खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सूबे में अमुन जी ज़िमेवारी पुलिस जी आहे। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ बि पुलिस जो किरदार साराह जोॻो आहे। पुलिस तरबियत खे बहितर करण सां गॾु जदीद हथियार ऐं टेक्नोलॉजी जी बि ॼाण ॾिनी वेंदी।

कोर्ट में एसटीपी पारां एहतजाज कयो वियो। कंबर में भी सियासी समाजी धुरन जो मुज़ाहिरो। काज़ी अहमद में भी समाजी तंज़ीम पारां रैली कढ़ी वई, एहतजाज कयो वियो। ठुल गंबट ऐं ढोकरीअ में बि बबरलोई धरणे में शरीक माण्हुनि ते तशद्दुद ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो।

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़, अञा साबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: GFM 88
3: नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

शरीफ कोसो ऐं ख़ुदा वश्क ख़ासि करे टंडो मोहम्मद ख़ान खां उहो वेठो आहे गानो कपड़ी पर आशिक़ चाढ़ो रोए पियो मीरसन बचा आशिक़ी पंहिंजे महबूब खे चए पियो त मुंहिंजा जानी मूंखे ख़बर पए आहे तूं अॼु विछोड़ो कयो थो वञे तोखे आख़िरी भाकुर त पयां हाय हाय

पाकिस्तान में एक मंसूबे तहत दहशतगर्दी थी रही है। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पाड़ेसरी मुल्क भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बलूचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चाहे तो अफगान रजीम दहशतगर्दन के रोकण में नाकाम वन सभी के गर्जी दहशतगर्दी जो मुकाबलो करो पव बलूचिस्तान के हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती लाय कम किया है। बलूचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढियल है। खिते में अमुन के क्याम लाय पाकिस्तान जो किरदार दुनिया के सामू है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एसाक डार जो कोशिशों सारा जोगियो।

ने राख जरिए अमेरिका की जंग बंदी वारी आच रद्द कर छी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की दावा, अमेरिकी अखबार मूजिब इराकी वजीर आजम अमेरिकी दौरे तां वापसी बाद ईरान जो दौरो कर ईरानी क्यादत के अमेरिका की जंग बंदी वारी आच बाबत आगाह कयो। ईरानी इख्तियार जवाब डींदे चयो त अर्जी जंग बंदी कबूल न हूंदी, अमेरिका सां ॻाल्हियुनि लाइ पहिरियां ई साल्स मौजूद आहिनि, अर्जी जंग बंदीअ सां अब्न आर्म्स जो मसलो हल न थींदो।

अमेरिका ईरान ते हमला तेज करे छड़िया चार शहरी शहीद खोस्तान एवाज बंदर अब्बास फरमान ए कश्मीर ते हमला कया वया सेनेट काम मौजूद ईरान के दिफाई सलाहतन ते हमला कया वया हैं ईरान जो भी अमेरिकी असासन अडन ते भी जवाबी वार बहरीन उर्दन में अमेरिकी अडन के निशानो बनाया वो पासदार इनकलाब मौजूद हमलन में अमेरिका जो वो नुकसान थो है। कें मुल्क जहा सासा मंझ बंद कर डंड तौर इस्तेमाल कर नतीजा खतरनाक थी सकन था ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची है ट्रंप के बयान से खुश थन्दड़ समझी वन तो हुकूमतन बेन मुल्क असासा मंझ बंद कर शुरू कया तो सभी जो नुकसान थन्द सदर ट्रंप ईरानी असासा नुकसान ला इस्तेमाल कर धमकी दिनी है। अमेरिका ईरान में छिकताण बाद आलमी मंडी में तेल महंगो थी वो आलमी मीडिया मौजूद ईरान ते अमेरिकी हमलन में तेजी बाद कच्चे तेल की कीमत $100 फी बैरल का भी वही वही है। बैरल कच्चो तेल फी बैरल $100 एक मरबान कच्चो तेल $107 फी बैरल वेप्रो थी रो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे से तरकी बाद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा कमांडर नेशनल स्टेट जग कमांडर मुकर्रर आमिर रजा के फोर स्टार जनरल के अहदे से तरकी मिलने वजीर आजम पारा वाधायू नयू जिम्मेवार मिलने नेक ख्वाहिशन जो इजहार भी किया। सदर आसिफ जरदारी से बलोचिस्तान के सूबाई वजीर की बिलावल हाउस में मुलाकात बलोचिस्तान की सूरत हाल ए तरक्याती हाल से गाल बोल सदर आसिफ जरदारी पारा बलोचिस्तान में तरक्की जो अमल तेज करने ते जोर भरो सूबाई वजीरन के अवाम से राबतन में भी रहने की हिदायत।

बारे में भी पीपी पारा रैलियूं कड़ी हुयूं गढ़ी यासीन नसीराबाद फकीराबाद कुबो सईद खान ऐं रैलियूं कढी वयूं। रैलियुनि में भारत ऐं मोदी ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई। अॻवाणनि चयो त मोदी ॿुधी छॾे त सिंधु दरिया ते पाकिस्तान जो हक़ आहे, पाणीअ ते धाड़ो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। बबर लोए में मासूम ॿारनि जे अॻवा ख़िलाफ़ एहतजाज करण तां गिरफ़्तार थियल सोनी पारस, लियाकत जलबाणी ऐं ॿियनि खे पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत पारां पुलिस ते सख़्त कावड़ जो इज़हार। गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे पेश करण जो हुकुम। अदालत चयो त पुरअमन एहतजाज ते तशद्दुद इंसानी हक़नि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। गिरफ़्तार कयलनि खे सुभाणे अदालत में पेश न कयो वियो त DIG खे ज़ाती हैसियत में तलब कयो वेंदो। बबरलोए धरणे ते पुलिस तशद्दुद गिरफ़्तारी ने अॻवा थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाज। हैदराबाद ऐं नवाबशाह में वकीलनि पारां अदालती कार्रवाइनि जो बाइकाट कयो वियो। खैरपुर ऐं ठरी मीरवा में वकीलनि पारां रैली कढी वई। कंदकोट में STP पारां एहतजाज कयो वियो। कंबर में बि सियासी समाजी धुरियुनि जो मुज़ाहिरो। काज़ी अहमद में बि समाजी तनज़ीम पारां रैली कढी वई, एहतजाज कयो वियो। ठुल गंबट ऐं डोकरी में बि बबरलोए धरणे में शरीक माण्हुनि ते तशद्दुद ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो।

0: अस्पताल वई आहे जेके सी सी टी फोर आहे हिनखे नलनि वाइट कयो वञे
1: ग़रीब शागिर्दनि जो जेको रस्तो आहे तरक़ी करण जो उहो हुनखे खोले न त इहे इहे जेके शयूं आहिनि इनकलाब जे तरफ़ वेंदियूं
0: इंसाफ़ न मिलंदो इन करे असीं हींअर क्लियर इन माइंड आहियूं त असीं रोडनि जी मज़ामत जे ज़रिए पंहिंजा हक़ हासिल कंदासीं
1: पंहिंजे बचनि जा सोन खपाए ज़मीनूं खपाए अची पढ़ाई कनि था भुख मरनि था पर सिंध पब्लिक सर्विस जेके चऊं था सिंध दुश्मन सर्विस आहे शागिर्दनि जी बरक़रार रखियो वेठा हूंदा त इहा जनम ॾींदी जंहिंजी खे को वक़्तु ईंदो उहा शइ हिते बि थियणी आहे
0: अञा बि टाइम आहे त तव्हां होश कयो हिन मामले में इंटरवीन कयो न त जेको एंटी क्लॉक रिवोल्यूशन हले थो जेको श्रीलंका खां शुरू थियो बंगाल वियो पोइ नेपाल वियो हाणे इंडिया आयो आहे उहो किथे पाकिस्तान अची वञे
2: हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ़ मुतासिर उम्मीदवारनि ऐं शागिर्दनि जो मार्च ऐं धरणो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे गॾियल चेटाभेटी 2024 जे नतीजनि में मुबैना बेज़ाब्तगिन मेरिट जी लताड़ ख़िलाफ़ मुतासिर उम्मीदवारनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज मुतासिर उम्मीदवारनि ऐं शागिर्दनि जुमे जी निमाज़ में कमीशन आफ़ीस ॿाहिरां रोड ते अदा कई अॻवाणनि चयो त चेटाभेटी इम्तिहान बाबति जाइज़ मुतालबा तस्लीम न कया विया त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो बाकराणी वेझो लाशारी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में जहिड़ो वाटेड़ो क़तल ॻोठु विधो लाशारी में लाशारी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में सघावती तकरार तां जहिड़ो थियो फायरिंग में वाटेड़ो वज़ीर लाशारी मारिजी वियो लाश इस्पताल मुंतकिल हिकु ॼणे जे क़तल बाद इलाइक़े में ख़ौफ़ वारी सूरतहाल कंडियारो में फुर मज़ाहमत ते क़तल थियल खाणोट वासी पोरेत जे वारसनि जो इंडस हाईवे ते लाश रखी धरणो पोरेत एजाज़ कोसो खे क़तल कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तार करण जो मुतालबो वारसनि चयो त हथियारबंदनि ट्रक रोके नौजवान एजाज़ कोसो खे गोलियूं हणी क़तल कयो नौजवान जा क़ातिल गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे खैबर वेझो गेड स्टेशन ते कम करण दौरान हेस्को मुलाज़िम करंट लॻण सबब फोत करंट विघे फोत थियल मुलाज़िम ग़ुलाम शबीर मला खंडो जो रहवासी हो फेज़गंज में पोरेत जी मासूम न्याणी हलण फिरण खां लाइ चार डॉक्टरनि पारां पोलियो जो शक ज़ाहिर ॻोठ खंडू खान शर में पोरेत जे 3 सालनि जी न्याणी जो हेठियों धड़ सुकी वियो पोरेत उस्मान शहर मौजूदु 3 सालनि जी न्याणी युसरा ॼमण महिल ठीकु हुई हाणे हलण फिरण खां लाचार आहे पंगरियो में क़ौमी अमन कमेटी पारां पाक फ़ौज जे हक़ में रैली हाई स्कूल खां निकितल रैली प्रेस क्लब पहुती पाक फ़ौज खे भेटा पेश कई वई

हिकु वण सिंध अमर जे नाव केटीएन न्यूज़ ऐं कावश जे वण पोखण वारे सॾु खे भरपूर मोट सिंध खे मौसमियाती तब्दीली जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾु ते सिंध वासियुनि ऐलानियल तारीख़ अॻु ई वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। केटीएन न्यूज़ ऐं कावश पारां 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
2: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
1: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
2: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
1: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
2: न अदा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
1: इस्तेमाल कीअं कजे?
2: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो GFM 90.8।

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

बलोचिस्तान में गैर मुल्की सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दीअ खे पूरी ताक़त सां चिथे छॾींदासीं। प्राक्सी अंसर बलोचिस्तान में तशदुद खे हथी ॾियण इस्तेहकाम खे कमज़ोर करण ऐं अमन खे टोड़ण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। हथियारबंद फ़ौज जे फैसलाती जवाब में आवाम जे इताद ज़रिए दुश्मन जे नापाक इरादनि खे नाकाम बणायो वेंदो। बलोचिस्तान जा मोबेवतन हिमत वारा माण्हू सूबे जे सभ खां वॾी ताक़त आहिनि। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जी एच क्यू में बि नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान खे ख़िताब कंदे चयो त दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ताईं फितनतुल ख़्वारिज ऐं फितनतुल हिंदुस्तान ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहंदियूं। दहशतगर्दनि जो ढांचो जिते बि हूंदो तबाह कयो वेंदो। लाॻीतो कोशन ऐं आवाम जी हिमायत सां बलोचिस्तान में जटादार अमुन क़ाइमु कयो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पियो सऊदी वली अहद बिन सलमान सां फ़ोन ते राब्तो। सऊदी अरब जे बहरी जहाज़नि ते हुसैन जे हमले जी सख़्तु लफ़्ज़नि मज़ामत। सऊदी अरब सां मुकमल एके जो इज़हार। शहबाज़ शरीफ़ चयो त मां फील्ड मार्शल ऐं क़ौम सऊदी क़यादत ऐं अवाम सां गॾु बीठल आहे। सऊदी बहरी टैंकर्स ते हमला कंहिं बि सूरत में क़बूल जो विच ओभर जी सूरत हाल हथनि मां निकिरी रही आहे। जंग हाणे हिते बंदि थियणु घुर्जे। गडि॒यल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल एंटो गुतेरेस विच ओभर जी सूरत हाल ते ॻणितीअ जो इज़हार कंदे चयो आहे त मसइलनि जो हल वाहिद सिर्फ़ सफ़ारतकारीअ में ई आहे। आबनाहरनि में तिजारती जहाज़नि जी अचु वञु बहाल थियणु घुर्जे। हुकूमत हिकु भेरो ॿीहर पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाधि करे छॾी। पेट्रोल 4.40 रुपया ऐं डीज़ल 3.62 रुपया महांगो। पेट्रोल जो 9.3152 रुपया ऐं डीज़ल जो 9.378 रुपया फी लीटर मुक़ररु। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां 24 जुलाई लाइ पेट्रोलियम शयुनि जे नवनि अघनि जो नोटिफिकेशन जारी। सिंध काबीना पारां वफ़ाक खां 5 लख मीट्रिक टन कणक ख़रीद करण जो फ़ैसिलो। सरकारी मुलाज़िम जे तफ़री ऐं सफ़री अलाउंस में वाध जी मंज़ूरी। मईशत मौसमियात मसनूई ज़ियारत ऐं आबी वसीलनि बाबति 4 टास्क फोर्स बि जोड़ियूं वयूं। वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे इजलास दौरान अहम फ़ैसिला। तालीमी बोर्ड जे चेयरमैन जी उमिरि जी हद 55 मां वधाए 63 साल मुक़ररु कई वई। सिंध सेक्रेटरिएट वज़ीर आला सेक्रेटरिएट सिंध संभली ऐं गवर्नर हाउस जे मुलाज़िमनि लाइ सिहत इंश्योरेंस वारी सहूलियत में वाध जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई। वॾे वज़ीर पारां सूबे में गुटको ऐं मावा विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाईअ जी बि हिदायत। वफ़ाक़ी हुकूमत जा इतिहादी नायो नई मर्कज़ी हुकूमत में शामिल आहियूं। पीपल्स पार्टीअ जी सिंध हुकूमत हक़ीक़ी आहे। आवाम खे ख़बर आहे त केरु फारम 47 ते इक़्तदार में आयो। शर्जील मेमण चयो आहे त असां रुॻो जमहूरियत लाइ वफ़ाक़ खे सपोर्ट कयो आहे। पंजाब में ज़िलाई सतह ते मोटरवेज ठही रहिया आहिनि। सिंध में जाइज़ मोटरवे बि न पियो ठाहियो वञे। आज़ादु कश्मीर में पीपी अक्सरियत सां कामयाबी माणींदी। समूरो पंजाब बरसाति में ॿुॾल आहे पर क़ौमी मीडिया कुझु बि न पई ॾेखारे। बलोचिस्तान जे इलाइक़े मस्तूंग में हथियारबंदनि जे हमले में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ गार्डन समेत शहीद। जेका बादवासी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करण जो हुकुम। बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज़ भुक्ती चयो आहे त जजिस मथां हमिलो रियासत मथां हमिलो बराबरि आहे। दहशतगर्दनि खे कंहिं बि सूरत में माफ़ न कयो वेंदो।

सिक्योरिटी फोर्स की मस्तुंग में कार्रवाई। फितनुल हिंदुस्तान जा छह दहशतगर्द मार जी विया, केतरा ही गिरफ्तार। सिक्योरिटी जरिए मूजिब दहशतगर्द कार्रवाई का खटकोचा वाले इलाके में ऑपरेशन करे दहशतगर्द जा केतरा ही ताकत तबाह कया। गिरफ्तार थे दहशतगर्द के सहूलतकार समेत मर्द औरतू बम्बार पण शामिल आन। दहशतगर्द के थाकन वतां वडे मिकदार में हथियार बारूदी मवाद हथ कयो वयो। दहशतगर्द के खात्मे ताईं कार्रवाई जारी रखी वेंदियूं।

जहांगीर शर जे अगवा वारे इतलात एसएसपी घोटकी वडी नफरी समेत पाण कचे पहुतो। बेरोटा वटा मुबैन अगवा थियल जहांगीर शर के खेचो जे इलाके मां बाजियाब कराइण जी दावा शर बिरादरी जा सवे माण्हू बि पुलिस खां अॻु खेचो पहुता। कराची में शहन वारियुनि जी मासूम बाड़ी अगवा खां पोइ ज़ियाती निशानो बणाए बेदर्दीअ सां क़तल जवाबदार पुलिस जे मुबैना मुक़ाबले में मारिजी वियो। क्या माड़ीअ में समुंड वेझो ॿोड़नि मां द्वा धीउ उमिरि जो लाश मिलियो। बाड़ीअ खे मुबैना ज़ियाती जो निशानो बणाए क़तल कंदड़ जवाबदार मुक़ाबले में मारिजी वियो। डीआईजी ॾखिण चयो आहे त सीसीटीवी फुटेजिस जी मदद सां गिरफ़्तार लाइ पहुतासीं पुलिस टीम ते जवाबदार फायरिंग कई, जवाबी फायरिंग में मारिजी वियो। शुरूआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाड़ी सां ज़ियाती जी तस्दीक थी आहे। खेरपुर वेझो फुरमज़ा मथे डाटसन ड्राइवर क़तल, सिम शाख वटि हथियारबंदनि डाटसन ड्राइवर अब्दुल लतीफ़ कुंभर खे अर्गमाल बणाए फुरकई मज़ा मथे हथियारबंदनि खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। लाश पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतक़िल। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अॼु खां 25 जुलाई ताईं मिटीअ जे तूफान सां गॾु हल्की ऐं तेज़ बरसाति जो इम्कान। पीडीए में सिंध में 23 ज़िलनि लाइ मौसमियाती एडवाइज़री जारी करे छॾी। हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, सखर, लाड़काणे, जामशोर, खेरपुर, कश्मोर, जेकाबाद, कंबर ऐं शिकारपुर में मींहुं वसी सघे थो। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, छटे, टंडो मोहम्मद खान, टंडेल अयार, सांगड़, मटियारी, घोटकी, नौशेरो, फिरोज़ में वसकार जो इम्कान। पीडीए में जो चवण आहे त अरबी समुंड मां ईंदड़ चौमासीअ जो ताक़तवर हवाई सिलसिलो सिंध खे मुतासिर करे रहियो आहे। वॾे वज़ीर चौमासी बरसातुनि खे नज़र आॾो रखंदे इंतिज़ामिया खे अलर्ट रहण जी हिदायत करे छॾी। ऐं हिकु वण सिंधु अमण जे नाले केटीए न्यूज़ ऐं कावत जे वण पोखण वारे सॾ खे भरपूर मोट। सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾ ते सिंध वासियुनि ऐलानियल तारीख़ खां अॻु ई वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। केटीए न्यूज़ ऐं कावश पारां 25 जुलाई खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अच्छा मुदस्सिर, तू बता मुझे यार, दिल पे हाथ रख के बता, तेरी वाली ने आज कौन से कलर के कपड़े पहने होंगे?
5: दिल पे हाथ रख के बता, लाल रंग के कपड़े पहने होंगे, तू देख लेंगे।
4: अबे तूने मुझे सोच के बताया, मुझे लग रहा है यार।
6: निशान, तू बता तेरी वाली ने कौन से रंग के कपड़े पहने होंगे?
4: मेरी वाली ने काले कलर के कपड़े पहने होंगे।
5: क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है अगले का यार।
6: अबे यार, वो तो वाकई में आ गई यार, इसकी वाली ने तो वाकई में लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। वाह,

0: शान यार, तेरा प्यार मुझे सच्चा नहीं लग रहा। तूने जो रंग बताया तो उसने वो नहीं पहना, लेकिन इसने सही बताया था।
1: चला

पाकिस्तान में एक मनसूबे तहत दहशतगर्दी थी रही है। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पाड़ेसरी मुल्क के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बलोचिस्तान बाबत रक्षा के खिताब कदे वजी अजम शहबाज शरीफ तो अफगान रजीम दहशतगर्द के रोकण में नाकाम व्यून सभी के गजी दहशतगर्दी जो मुकाबलो करो पवन। बलोचिस्तान की हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती लाय कम किया है। बलोचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढियल है। खिते में अमन के क्याम लाय पाकिस्तान जो किरदार दुनिया के सामू है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसाक डार जो कोशिशों सारा जोगियो हैं। ईरान इराक जरिए अमरीका की जंगबंदी वाली आर्च रद्द कर छी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की दावा। अमरीकी अखबार मौजिब इराकी वजीर आजम अमरीकी दौरे तां वापसी बाद ईरान जो दौरो करे ईरानी क्यादत के अमरीका की जंगबंदी वाली आर्च बाबत आगाह कियो। ईरानी अख्तियारियन जवाब दींदे चयो त आरसी जंगबंदी कबूल न हूंदी। अमरीका सां गालियन लाइ पहिरियां ई सालिस मौजूद आहिनि। आरसी जंगबंदी सां अपना हर मुझो मसलो हल न थींदो।

0: सोन खपाए जमीन खपाए अच्छी पढ़ाई कन था भुख मरन था पर सिंध पब्लिक सर्विस जी चवन था सिंध दुश्मन सर्विस शागिर्द की बरकरार रखो वेठा हों जन्म दी जयंती के वक्त इंदो वह शे इतने भी जनी है अना भी टाइम आ तुम होश कर इन मामले में इंटरवीन करो एंटी क्लॉक रिवोल्यूशन हले तो जो श्रीलंका का शुरू थो बंगाल वो नेपाल वो हाँ इंडिया आयो वो कि पाकिस्तान अची वे
1: हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ मुतासर उम्मीदवार ए शागिर्द मार्च ए धरणो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की गडियल चटाभेटी 2024 के नतीजन में मुबैन बेसाबियन मेरिट की लताड़ ए अकरबा परवरी खिलाफ मुतासर उम्मीदवार ए शागिर्द एहतजाज मुतासर उम्मीदवार ए शागिर्द नमाज भी कमीशन ऑफिस बहरा रोड से अदा कई अगवाड़न चटाभेटी इम्तहान बाबत जायज मुतालबा तस्लीम न किया गया तो एहतजाज को दायरो बताया वो बागरानी वेझो लाशारी बिरादरी की बिन धुरियन में छेड़ो वाटड़ो कतल गोठ वधू लाशारी में लाशारी बिरादरी की बिन धुरियन में सगावती तकरार का छेड़ो थो फायरिंग में वाटड़ो वजीर लाशारी मारजी वो लाश अस्पताल मुंतकिल एक जड़े के कतल बाद इलाके में खौफ वारी सूरत

0: रोड मां पुरसार नमूने गुफ़्तल निगरी जो पतो न पियो। इंतज़ामिया निगरी जी ॻोल्हा में को बि संजीदा तारक न वरितो। वारिस सख़्त परेशान रहती मोहले मां 8 ॾींहं अॻु पुरसार नमूने गुफ़्तल निगरी आसमा मलिक जो पतो न पियो। वारिसनि मूजिब पुलिस निगरी जी ॻोल्हा में का बि मदद न करे रही आहे। ॻोल्हा में मदद कई वञे। हिकु वण सिंध वण जे नाओ केटीए न्यूज़ ऐं काविश जे वण पोखण वारे सदिके भरपूर मोट। सिंध खे मौसमियाती तब्दीली जे असर खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सद ते सिंध वासियुनि वण लॻाइण शुरू करे छॾिया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: यार ही गोडन जो सूर ऐं चेल जो सूर त मुझे जान ही करी छॾी आहे। हलण वेहण हर कम ॾुखियो लॻे थो।
3: त पोइ छा अञा ताईं फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
2: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
3: बिल्कुलु अदा, कुदरती जुज़न सां तयार कयल फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी। सूर, सोडियम, जिस्म जे नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध ऐं कुलनि जी तकलीफ़ या वर्जिश का पोए छिक, हर हालत में बेहतरीन साथी। फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल किए कजे।
3: रुगो मुतासिर हंध ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लगाए ऐं आराम जो अहसास वठ। ऐं ॿुध, जेकॾहिं उमिरि या हज ते वञण जो इरादो अथई त फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा।
2: वाह, पोए अॼु ई वठी ईंदसि।
3: फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान में एक मंसूबे तहत दहशतगर्दी थी रही है। पाकिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। पाड़ेसरी मुल्क के भी समझाने की कोशिश कर रहा आयु। बलोचिस्तान बाबत वर्कशॉप के खिताब कंदे वजीर आजम अफगान रजीम दहशतगर्दन के रोकण में नाकाम व्यून सभी के गर्जी दहशतगर्दी जो मुकाबलो करण पव। बलोचिस्तान की हुकूमत सदाई वफाक की मजबूती लाय कम किया है। बलोचिस्तान की तरक्की मुल्की तरक्की से गंढियल है। खिते में अमन के क्याम लाय पाकिस्तान जो किरदार दुनिया के सामू है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसाक डार जो कोशिशों सराह जोगियो।

वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सब का वही डेटा सेंटर स्काई 47 कराकरम हाई वन जो इफ्तिताह कर सेंटर क्लाउड कम्यूटिंग डेटा होस्टिंग डिजिटल खिदमत मजबूत बुनियाद फराहम कर सेंटर हथरादू जहानत मशीन लर्निंग हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग जो घुर्जू पूरी करने की सलाहियत रखे तो वजीर आजम शहबाज शरीफ चुका है तो हक की जंग में कामयाबी मुल्की तारीख जो अजीम तरीन लम्हो हो दुखियान चैलेंजेस जो हौसले से मुकाबलो क्यों तो हक की जंग जड़ा तारीखी कारनामा जन्म वा लागी तो मेहनत अड़न अजीम मनसूबन के हकीकत जो रूप डी है स्काई 47 जड़ा मनसूबा पाकिस्तान के मुस्तबिल की जमानत है। ईरान इराक जरिए अमेरिका की जंगबंदी वरी आछ रद्द कर छी अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की दावा अमरीकी अखबार मूजिब इराकी वजीर आजम अमरीकी दौरे त वापसी बाद ईरान जो दौरो करे ईरानी क्यादत के अमरीका की जंगबंदी वरी आछ बाबत आगाह कयो ईरानी अख्तियार जवाब डींदे चयो त आर्जी जंगबंदी कबूल न हुंदी अमरीका सां गालन लाए पहिरियां ही ट्रैकड़ कंदड़ मुल्क मौजूद आहिन आर्जी जंगबंदी सां आबनाए हुरमस जो मसलो हल न थींदो। अमरीका ईरान ते हमला तेज कर छड़िया वधिक चार शहरी शहीद खुजस्तान अहवाज बंदर अब्बास करमान ए कशम ते हमला किया वया सेंटकॉम मूजिब ईरान के दिफाई सलाहियतुन ते भी हमला किया वया आहिन ईरान जो भी अमरीकी अड्डन ते जवाबी वार बहरीन ए उर्दन में अमरीकी अड्डन ते हमला पास्तारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमेज़न जो डेटा सेंटर तबाह कर वो है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की किर्गिस्तान में ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची से अहम मुलाकात बेतरफन लागापन समेत खिते की मौजूदा सूरत हाल से ख्याल डे वठ इसहाक डार पारा खिते की ताजी सूरत हाल से गणती जाहिर इस्लामाबाद मुआहदे से अमल लाए जोर ईरानी पर अब्बास इराकची पारा खिते में अमन के क्याम लाए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की वाखाण बिन्हीं अगवानों जो मौजूदा सूरत हाल से राबतन में रहने से बेतफाक अब्बास इराकची जो चवण हो तो अमरीका की सीधी रीत मदाखलत आबनाए हुरमस की सलामती के खतरे में विझी छो है इस्लामाबाद मुआहदे बाद अमरीकी हमलन साबित किया तो वाशिंगटन मुआहदा टोड़ींदड़ है।

कानून टोड़ींदड़ ऐं ॾोह कंदड़ खे कानून जे कटहरे में पेश करणु पुलिस जी ज़िमेवारी बहादुरी सां दहशतगर्दीअ जो मुक़ाबिलो करे रहिया आहिनि। कराची में सईदाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस जी तरबियत मुकमल कंदड़ जवाननि खे ख़िताब कंदे सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सूबे में अमुन अमान जी ज़िमेवारी पुलिस जी आहे। दहशतगर्दीअ ख़िलाफ़ बि पुलिस जो किरदारु साराह जोॻो आहे। पुलिस तरबियत खे बहितर करण सां गॾु जदीद हथियार ऐं टेक्नोलॉजी बि ॾिनी वेंदी।

ओबरलो में मासूम बालन की अगवा खिलाफ एहतजाज करण तां गिरफ्तार थियल सोनी पारस लियाकत जलबाणी ए बेन के पुलिस अदालत में पेश न कयो। अदालत पारां पुलिस ते सख्त कावड़ जो इज़हार। गिरफ्तार कयलन के सुभाणे ताईं पेश करण जो हुकुम। अदालत चयो त पुरअमन एहतजाज ते तशद्दुद इंसानी हक़न जी खिलाफ़ आहे, ज़िमेवारनि खिलाफ़ कार्रवाई कई वञे। गिरफ़्तार कयलन खे सुभाणे अदालत में पेश न कयो वियो त DIG खे ज़ाती हैसियत में तलब कयो वेंदो। बबलो धरणे ते पुलिस तशद्दुद गिरफ़्तारियुनि ऐं अॻवा थियल ॿारनि जी बाज़ियाबी लाइ सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा। हैदराबाद ऐं नवाबशाह में वकीलनि पारां अदालती कार्रवाइनि जो बाइकाट कयो वियो। खैरपुर ऐं ठरी मीरवा में बि वकीलनि रैली कढी नारेबाज़ी कई। हैदराबाद में डॉक्टर न्याज कालाणी जी अॻुवाणीअ में रैली कढी वई। कंदकोट में STP ऐं कंबर में बि सियासी समाजी धुरनि पारां मुज़ाहिरो कयो वियो। काज़ी अहमद ठुलो गंबट ऐं ॾोकिरी में बि बबलो धरणे में शरीक माण्हुनि ते तशद्दुद ख़िलाफ़ शहरी रोडनि ते निकिरी आया।

0: असन पब्लिक सर्विस जेके चवो था सिंध दुश्मन सर्विस आहे शागिर्दनि जी बरकरार रखियो वेठा हूंदा त इहा जनम ॾींदी जयंती खे जो वक़्तु ईंदो उहा शइ हिते बि थियणी आहे अञा बि टाइम आहे त तव्हां होश कयो हिन मामले में इंटरवीन कयो न त जेको एंटी क्लॉक रिवोल्यूशन हले थो जेको श्रीलंका खां शुरू थियो बंगाल वियो पोइ नेपाल वियो हाणे इंडिया आयो आहे उहो किथे पाकिस्तान अची वञे
1: हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ़ मुतासिर उम्मीदवारनि ऐं शागिर्दनि जो मार्च ऐं धरणो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी गॾियल चटाभेटी 2024 जे नतीजनि में मुबैना बेज़ाब्तगिन मेरठ जी लताड़ ऐं अकरबा परवरी खिलाफ़ मुतासिर उम्मीदवारनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज मुतासिर उम्मीदवारनि ऐं शागिर्दनि जुमे जी नमाज़ बि कमीशन आफ़ीस ॿाहिरां रोड ते अदा कई अॻवाननि चयो त चटाभेटी इम्तिहान बाबति जाइज़ मुतालबा तस्लीम न कया विया त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो मरसू मरसू सिंधू न ॾेसूं पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिदायत ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में पीपुल्स पार्टीअ जूं रैलियूं लाड़काणो कंबर कंदकोट कश्मोर खैरपुर शादात कोट मिठी कोट ग़ुलाम मोहम्मद उबावड़ो तंगवाणी नओं देरो ॾोकड़ी डिगड़ी लकी ग़ुलाम शाह ठुल रतोदेरो कंबर सिंधुड़ी वारह में पीपुल्स पार्टीअ पारां रैलियूं कढियूं वयूं गढ़ी यासीन नसीराबाद फ़कीराबाद कुबो सईद खान में बि रैलियूं कढियूं वयूं रैलियुनि में भारत ऐं मोदी ख़िलाफ़ नारेबाज़ी कई वई अॻवाननि जो चवणु हो त मोदी ॿुधी छॾे सिंधू दरिया ते पाकिस्तान जो हक़ आहे पाणी ते धाड़ो कंहिं बि सूरत में क़बूलु न आहे

बावड़ो में गुजरियल ॾींहुं अॻूणे एम पी ए शहरयार शर जे पुट जे अॻवा वारे वाके जो केस दाख़िल। नौजवान जहांगीर शर जे मुबीना अॻवा वाके जो केस संदसि वेझे अज़ीज़ राशिद शर जे फरियाद ते दाख़िल। रेती थाणे ते दाख़िल केस में 5 सुञातल ऐं 3 अण सुञातल जवाबदारनि खे नामज़द कयो वियो। केस में जतोई शर, संदसि पुट नादर शर, मुराद उर्फ़ मुरादू शर, ख़ैरू शर ऐं दादू शर खे नामज़द कयो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं जहांगीर शर खे अॻवाबाद खींजू वारे इलाइक़े मां ड्रामाई अंदाज़ में बाज़ाब कराए वियो हो। शहदाद कोट ऐं कुबो सईद खान तालकनि जी समूरनि शाखनि में ज़रई पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। सिंध हारी आबादगार इतिहाद पारां M8 मोटरवे ते धरणो। आबादगारनि मूजिबि दरिया जी सिस्टम में पाणी मौजूदु आहे, पोइ बि पाणी न पियो ॾिनो वञे। शाखनि खे पाणी फराहम करे खोट ख़तमु कई वञे। बिरिया रोड मां पुरोसरा नमूने गुम थियल निंगरी जो पतो न पियो। इंतिज़ामिया निंगरी जी ॻोल्हा में को बि संजीदा तहरुक न वरितो। वारिस सख़्त परेशान। रेती पाड़े मां 8 ॾींहं अॻु पुरोसरा नमूने गुम थियल निंगरी आसमा मलिक जो पतो न पियो। वारसनि मूजिबि पुलिस निंगरी जी ॻोल्हा में का बि मदद न करे रही आहे। ॻोल्हा में मदद कई वञे। हिकु वण सिंध अमर जे नाओ KTN न्यूज़ ऐं कावश जी वण पोखण वारी सॾ खे भरपूर मोट। सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी सॾ ते सिंध वासिन वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। KTN न्यूज़ ऐं कावश पारां अॼु खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिननि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: यार कुछ दिन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अनिया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो

0: हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
1: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी
0: इहा वाकई फायदे वाली आहे छा
1: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थेल हंदते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
0: सिर्फ चेले सूर लाए
1: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर कंध आई चेले जी तकलीफ सट धक लगन पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे
0: इस्तेमाल किए कजे
1: मुतासिर थेल हंदते डी में खां टे भेरा नरमी सा लगायो आराम जो एहसास हासिल करियो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर खां आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
2: It's 6:15 p.m.
3: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: मिलकर

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुल, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: बिस्कोनी म्यूजिक सीजन 2

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
0: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
0: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
1: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
2: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
1: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
2: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
1: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
2: गर्दन और कंधों के दर्द
1: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
2: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
2: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
3: आप सुन रहे हैं
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: यार कुछ ॾींहनि खां चेल जो सूर, जोड़नि जी तकलीफ़ ऐं असाबी दर्द एतिरो वधी वियो आहे जो हलण फिरण बि ॾुखियो लॻे थो।
1: त पोइ तूं फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करीं?
0: इहा वाकई फ़ाइदे वारी आहे छा?
1: बिल्कुलु, फ़क़ीरी डेक्स मरहम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
0: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
1: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़नि जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
0: इस्तेमाल कीअं कजे?
1: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2-3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हाँ, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सिंध के माथे का झूमर,
2: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: आसिम चल, लेट हो
5: रहा है। 2 मिनट, I'll be there। हेलो, किधर हो यार? I'm about to go on stage।
6: कब से वेट कर रहा हूँ, तुम निकली भी हो
2: यार? मैं नहीं आ रही।
5: क्या मतलब?
2: I'm leaving।

हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, Sojan, Varam, Fauri Khatam. Aaj hi karibi store se naam lekar talab karein.
2: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
3: शहबाज शरीफ के चौबीस मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए जेके इलेक्ट्रिक बसू लाहौर में हली रही हैं। मरियम नवाज उ बसू कश्मीर आने रही है। पंजाब की वजीर अला जलसे के खिताब में पीपुल्स पार्टी से तनकी दीवार। मरियम नवाज मुखालफन जो जंगू डकी रही हैं। मुखालफन जो टोड़ू बुधाई रही हैं नवाज लीग आजाद कश्मीर के अवाम की हिमायत से खटी वही है। बिलाल भुट्टो जो नालो खण बिना मरियम नवाज मुखालफ चई रो हो असानी आजाद कश्मीर में हुकूमत हुई तो आज़ाद कश्मीर में थोड़े अरसे लाए हुकूमत हुई उन बावजूद एतरा मनसूबा आंदा पंज साल में कश्मीर पंजाब का भी अगते वही सके तो। पीपी चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी है तो कश्मीर जो फैसलो रुगो कश्मीरी कंदा इस्लामाबाद पंजाब या सिंध कश्मीर जो फैसलो नथा करे सकन कश्मीरी बिरादरी के हकन लाए चूंडुन में पीपल्स पार्टी के कामयाब करें।

ईरान अमरीका जे इराक ज़रिए पेश कयल जंगबंदी जी तजवीज़ रद्द करे छॾी। अमरीकी अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त ईरान इराकी वज़ीर आज़म अली अलज़ैदी जे ज़रिए पेश कयल तजवीज़ रद्द कई। ईरानी अख़्तियारनि जो चवणु आहे त आर्ज़ी जंगबंदी क़बूल न आहे।

अमरीकी फ़ौज जा ईरान ते लाॻी तो पहिरीं राति बि हमला मवासिलाती नेटवर्क्स ऐं सामूंडी फ़ौज जी सलाहियतुनि खे निशानो बणाइण जी दावा ईरानी मीडिया मूजिबि खोज़िस्तान सूबे में अमरीकी हमले में 4 ॼणा शहीद थियण जी तस्दीक अमरीकी हमलनि बाद ईरान जा जवाबी वार बहरेन में अमरीकी कंपनी एमेज़ॉन जे डेटा सेंटर खे निशानो बणाइण जी दावा कुवैत उर्दन ऐं बहरेन में बि अमरीकी अॾनि ते हमला कया विया पासदारनि इनकलाब जी कुसुम बेट ते उॾाम कंदड़ हिकु जहाज़ खे बि किराइण जी दावा अमरीका ईरान विच में शिकतान ऐं हरमोज़ लंघ जे बंदि थियण बाद आलमी मार्केट में कचे तेल जूं क़ीमतूं $100 फी बैरल खां वधी वियूं ब्रेंट क्रूड ऑयल जी क़ीमत $101 फी बैरल ताईं पहुची वई WTI क्रूड ऑयल जी क़ीमत में बाद क़ीमत $90 फी बैरल खां वधी वई मर्बन क्रूड ऑयल जी क़ीमत $107 फी बैरल ताईं पहुची वई गुज़िरियल ॾींहुं रुॻो हिकु ऑयल टैंकर ई हरमोज़ लंघ खां गुज़री सघियो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराग़ची सां मुलाक़ात इलाइक़ाई अमन लाइ सहकार जारी रखण ऐं इस्लामाबाद मुफ़ाहिमत खे अॻिते वधाइण ते ज़ोर शंघाई सहकार तंज़ीम जे परॾेही वज़ीरनि जे इजलास जे मौक़े ते मुलाक़ात थी खिते जी मौजूदा सूरताल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई ॿिन्ही अॻवाणनि गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि ते वेझा राब्ता ऐं मुशावरत जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो इलाइक़ाई अमन इस्तेहकाम ऐं गॾियल खुशहाली लाइ गॾिजी कमु करण जो अज़म बि वरिजाए वियो पाकिस्तान अंदरि दहशतगर्द कारवाइयुनि में भारत जा हथ आहिनि अफ़गान तालिबान रिजीम दहशतगर्दनि खे रोकण में नाकाम थी चुकी आहे दहशतगर्दी ख़िलाफ़ु जंग में असांजा 90,000 माण्हू शहीद थी चुका आहिनि गुज़िरियल ॾींहुं मस्तोग में सेशन जज खे क़तलु कयो वियो बलोचिस्तान जे माण्हुनि जूं क़ुर्बानीूं ज़ाया न थींदियूं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो तक़रीब खे ख़िताब वज़ीर आज़म चयो त मुल्क मां दहशतगर्दी जो मुकमल ख़ात्मो थी चुको हो हिकु साज़िश त दहशतगर्दी वापसि आई आहे सभिनी खे गॾिजी मुक़ाबिलो करणो पवंदो

हाणे नेब बाबति समूरा केस आईनी अदालत ॿुधंदी। सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। फ़ैसिले में चयो वियो आहे त नेब कानून में तरमीम बाबति सुप्रीम कोर्ट नेब जा केस नथी ॿुधी सघे। नेब जा समूरा केस वफ़ाक़ी आईनी अदालत मुंतक़िल थी विया आहिनि। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर 16 जुलाई ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो पढ़ी ॿुधायो। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जी सरप्राइज़ मेटे रुकनी बेंच ॿुधणी हलाई। बेंच में जस्टिस मुसरत लाली ऐं जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट जे 30 सुफ़नि ते ॿधल फ़ैसिले में चयो वियो आहे त सुप्रीम कोर्ट वफ़ाक़ी शरई अदालत जे फ़ैसिलनि ख़िलाफ़ अपीलूं ॿुधी सघे थी। नए बाबति केसनि जो अख़्तियार वफ़ाक़ी आईनी अदालत वटि आहे। उहो मुमकिन न आहे त ज़मानत जूं दरख़्वास्तूं सुप्रीम कोर्ट ऐं मर्कज़ी अपीलूं आईनी अदालत ॿुधे। दरख़्वास्त गुज़ार जे पसंदे या तरजीहुनि ते फोरम तय नथो करे सघिजे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा खे 4-स्टार जनरल जे उहिदे ते तरक़ी ॾेई कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुक़ररु करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जनरल आमिर रज़ा खे मुबारकूं ॾींदे अहम ज़िमेवारी सरअंजाम ॾियण लाइ नए ख़्वाहिशनि जो इज़हार कयो। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा खे जनवरी 2025 में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ मुक़ररु कयो वियो हो। عوام جو تحفظ انصاف کی فراہمی ہے قانون کی بھنجکڑی کدڑن کے عدالتن کے کٹڑے میں آن پولیس فورس کی بنیادی ذمہ واری ہے۔ وڈے وزیر مراد علی شاہ جو سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں پاسنگ آؤٹ تقریب کے خطاب وڈے وزیر چھو تا پولیس کی کارکردگی کے ودھیق بہتر بنائن سندھ حکومت کی پہری ترجیح ہے۔ پولیس کے سمورن مسئلن کے بہتر ترجیح بنیادن تے حل کیا ویندو۔ پولیس پانے بہترین کارکردگی کے ذریعے پانچ امیج بہتر بنائے سکے تھی۔ बबलोई बाईपास ते ॿारनि जी बाज़ाइब लाइ एहतिजाज कंदड़ वारसन समेत 150 ॼणनि ते दहशतगर्दी एक्ट तहत केस दाख़िल। उजाला सोलंकी जो पीउ शमसुद्दीन सोलंकी ऐं चाचो सरदार सोलंकी बि जवाबदार तौरु नामज़द। सुणी पारस पुनल सारियो गुलसन खोसो ऐं जबार शेख खे केस में नामज़द कयो वियो। शहनाज शेख मिठल खोड़ो ऐं इब्राहिम सोलंकी बि केस में जवाबदार तौरु नामज़द। सरकार जी फरियाद ते केस दाख़िल कयो वियो। केस में क़ौमी झंडे जी तोहीन पथराव ऐं रोड बंदि करण समेत ॿिया कलम शामिल। पुलिस रोड तां गीले गिरफ़्तार कयल लियाकत जलबाणी जो केस मां नालो गुम करे छॾियो। ॿ ॾींहं अॻु प्रिया एक्शन कमेटी जे सॾ ते क़ौमी शराब ते धरणो ऐं वियो हो। पुलिस लठबाज़ी करण बाद सुणी पार समेत ॿियनि खे गिरफ़्तार करे अणॼातल हंधु मुंतक़िल करे छॾियो हो।

खेरापुर जी अदालत बाबोलोई पुलिस के गिरफ्तार कल समूरन मानून के अजु ही पेश करने जो हुक्म दे छो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त बुधनी थी। एस एच ओ बाबोलोई अदालत आडो पेश थी समूरन मानून के अजु पेश किया वो। अदालत चो तो जैसे अजु गिरफ्तार कल समूरन मानून के पेश न किया वो तो सुबह डीआईजी एस एस पी पेश थी जवाब जमा कराएं। अदालत बाहर मीडिया से ालाईंदे वकील जाफर शाह पुलिस पुरमन मुजाहरीन से तशद करने बाद खंबे गुम कर छो है। मतन दहशतगर्दी एक्ट तहत कैस दाखिल कर जुल्म की इंतहा कर छी है। बबलोई धरने से पुलिस चढ़ाई ए गिरफ्तार खिलाफ खैरापुर में वकीलन जो एस एस पी ऑफिस आडो धरणो। जाफर शाह फयाज खमीसानी ए बेन की अगुवाणी में एहतजाज किया वो। बार काउंसिल का रैली कड़ी एस एस पी ऑफिस आडो धरणो है वो। सिंध बार काउंसिल के सद से सजी सिंध में अदालती कार्रवाई जो भी बायकाट। कराची हैदराबाद सखर लाड़कानो खिपरो टंडो आदम ठरी मीरवा ए बेन शहर में अदालती कार्रवाई मुअतल कई वही। वकील अगवाणन है तो पुरमन मुजाहरीन से तशद्दुद कंदड़ पुलिस अमलदारन खिलाफ कार्रवाई करे गिरफ्तार कल समूरन मानून के आजाद किया। बबलोई में बाड़न की बाजियाबी लाइ एहतजाज कदड़न मथा पुलिस की चढ़ाई है। अगवाणन की गिरफ्तारी

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: ब्रेकिंग न्यूज, द मोस्ट वांटेड गैंग ऑफ द टाउन इज रोमिंग अराउंड एंड स्टिल ऑन द रन। इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट दे आर अबाउट टू रॉब द रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान। Deputy Commissioner of the Police thereby has advised the citizens to stay safe.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज
2: GFM 88
1: नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

अमरीकी फौज जा तेहरान सूदो ईरान के केतरन ही शहरों से हमला। पासदारन इनकलाब की नेवी ठिकाणन कमांड सेंटर्स ड्रोन गोदाम ए मवासलाती नेटवर्क्स के निशानो बनाने की दावा। कोजिस्तान के शहर अवाज में अमरीकी मिजाइल हमले में 4 जना शहीद 5 जख्मी। ईरानी फौज पारा जवाबी कार्रवाई में बहरेन उर्दन ए कुवैत में 12 के जखीरन फौजी राजकान अमरीकी जहाजन के हैंगर के निशानो बनाने की दावा। इराक के अरबिल हवाई अड्डे से भी ईरानी ड्रोन हमलो। पासदारन इनकलाब अमरीका के अडा दियण ते बरतानिया के वार्निंग दींदे चयो ता ईरान खिलाफ इस्तेमाल थींदड़ हर फौजी अडो ईरान जो हदफ हूंदो। बे पासे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी ईरान के वडी फौजी ऑपरेशन जी धमकी। आमने एयरमोस में तजारती जहाजन ते हमले में ईरान जे जब्त थियल असासन मां नुकसान भरण जो ऐलान। ईरानी परडेही वजीर असासन के अदायगी लाइ जब्त करण खतरनाक ऐं चिड़ ॾियारींदड़ मिसाल करार ॾेई छॾियो।

कश्मीर के कश्मोर ऐं मीरपुर के मीरपुर खास न समझो बिलावल बरखुरदार मुंहिंजी ॻाल्हि खे ख़राब न समझो सियासत में जुमिलनि जी ॾे वठि थींदी रहंदी आहे सियासी पार्टियुनि में लड़ाई ऐं मारकुट न पर तनक़ीद थियणु घुरिजे नवाज़ लीग जे सदर जो आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े मीरपुर में चूंड जलसे खे ख़िताब नवाज़ शरीफ़ चयो त मरी खां मुज़फ़राबाद ताईं एक्सप्रेस वे ठाहियो वेंदो मरियम नवाज़ मीरपुर में 10 मोबाइल इस्पतालूं आणे रही आहे शहबाज शरीफ़ खे चवंदुसि त मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आहे जेके इलेक्ट्रिक बसूं लाहौर में हली रहियूं आहिनि मरियम नवाज़ उहे बसूं कश्मीर आणे रही आहे पंजाब जी वज़ीर आला जा जलसे खे ख़िताब में पीपल्स पार्टी ते तनक़ीदी वार मरियम नवाज़ चयो त मुखालफ़नि जूं जंगूं ॾकी रहियूं आहिनि मुखालफ़नि जूं डोड़ूं ॿुधाए रहियूं आहिनि त नवाज़ लीग आज़ाद कश्मीर जे अवाम जी हिमायत सां खटी वई आहे बिलावल भुट्टो जो नालो खणण बिना मरियम नवाज़ चयो त मुखालिफ़ चई रहियो हो त असांजे आज़ादु कश्मीर में हुकूमत हुई त छा कयो आज़ादु कश्मीर में थोरे अरसे खां हुकूमत हुई उन बावजूदु एतिरा मनसूबा आंदा 5 सालनि में कश्मीर पंजाब खां बि अॻिते वञी सघे थो पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त कश्मीर जो फ़ैसिलो रुॻो कश्मीरी कंदा इस्लामाबाद पंजाब या सिंध कश्मीर जो फ़ैसिलो नथा करे सघनि कश्मीर बिरादरी जे हक़नि लाइ चूंडुनि में पीपल्स पार्टी खे कामयाबु करियो पाकिस्तान अंदरि दहशतगर्द कारवायुनि में भारत जा हथ आहिनि अफ़गान तालिबान रिजीम दहशतगर्दनि खे रोकण में नाकाम थी चुकी आहे दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में असांजा 90,000 माण्हू शहीद थी चुका आहिनि गुज़िरियल ॾींहुं मस्तोंग में सेशन जज खे क़तलु कयो वियो बलोचिस्तान जे माण्हुनि जूं क़ुर्बानीूं ज़ाया न थींदियूं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो तकरीब खे ख़िताब वज़ीर आज़म चयो त मुल्क मां दहशतगर्दी जो मुकमिल ख़ात्मो थी चुको हो हिकु साज़िश त दहशतगर्दी वापसि आई आहे सभिनी खे गॾिजी मुक़ाबिलो करणो पवंदो

0: हाणे नेब बाबत समूरा केस आईनी अदालत ॿुधंदी, सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। फ़ैसिले में चयो वियो आहे त नेब कानून में तरमीम बाद सुप्रीम कोर्ट नेब जा केस नथी ॿुधी सघे। नेब जा समूरा केस वफ़ाक़ी आईनी अदालत मुंतक़िल थी विया आहिनि। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर 16 जुलाई ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो पढ़ी ॿुधायो। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जी सरबराई में 3 रुकनी बेंच ॿुधणी हलाई। बेंच में जस्टिस मुसरत लाली ऐं जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। सुप्रीम कोर्ट जे 30 सफ़नि ते ॿधल फ़ैसिले में चयो वियो आहे त सुप्रीम कोर्ट वफ़ाक़ी शरई अदालत जे फ़ैसिलनि ख़िलाफ़ अपीलूं ॿुधी सघे थी। नए बाबति केसनि जो अख़्तियार वफ़ाक़ी आईनी अदालत वटि आहे। उहो मुमकिन आहे त ज़मानत जूं दरख़्वास्तूं सुप्रीम कोर्ट ऐं मर्कज़ी अपीलूं आईनी अदालत ॿुधे। दरख़्वास्त गुज़र जे पसंदि या तरजीहनि ते फोरम तय नथो करे सघिजे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू ना मेरा हीटर, तू तो मेरा फैन।
1: राइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 10 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Index Ointment.
2: Tez aaram, muasir hifazat aur qabile aitmad mayar.
1: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.
4: Ab to kaha kare chalo? Data center, cloud computing, data hosting and digital khidmaton lai mazboot bunyad maya kando. Takrib ke khitab mein wazir azam chyo ta Sky 47 mansoobe ke मजबूत सिक्योरिटी मुहैया कंदो दुखियाइन ऐं चैलेंजिस जो हिमत सां मुक़ाबिलो करियूं त हक़ जे मार्क जहिड़ा तारीख़ी कारनामा जनम वठंदा आहिनि फील्ड मार्शल जे डूरस क़यादत खे भेटा पेश करियूं था स्काई 47 जहिड़ा मनसूबा पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल जी ज़मानत आहिनि असां मुतहद कमु करियूं त को बि मक़सदु हासिलु करणु ॾुखियो न आहे ईरान इराकी वज़ीर आज़म वसीले पेश कयल अमरीकी जंगबंदी जी तजवीज़ रद्द करे छॾी आर्ज़ी जंगबंदी क़बूल न करण जोगी करार अमरीकी अख़बार जी रिपोर्ट मूजिबि ईरानी अख़्तियारनि चयो त ईरानी सरकार आर्ज़ी मुआदे में दिलचस्पी नथी रखे आछ में आपने हरबॉस जे कंट्रोल जो मसलो बि हल न कयो वियो आहे रिपोर्ट मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची चयो त इराकी वज़ीर आज़म वॉशिंगटन दौरे बाबति पंहिंजी राय ऐं ख़्यालनि खां आगाह कयो ईरान ऐं अमरीका में अॻु ई घणा टियाकड़ मौजूदु आहिनि मसलो न्यापा पचाइण जो न पर अमरीका जे रवै जो आहे जेको गैर मुंतकी लालच ऐं दॿाउ विझण ते ॿधलु आहे इराकी वज़ीर आज़म वॉशिंगटन जे दौरे खां पोइ तेहरान पहुतो ऐं ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातूं कयूं रिपोर्ट मूजिबि अमरीका पारां जंगबंदी जी आछ जा मुकमल तफ़सील साम्हूं न अची सघिया

अमरीकी फ़ौज जा तेहरान सूधो ईरान के केतरनि ही शहरों से हमला। पासदारन इनकलाब जी नेवी ठिकाणन कमांड सेंटर्स ड्रोन गोदाम ए मवासलाती नेटवर्क्स के निशानो बणाने की दावा। कोजिस्तान के शहर अवाज में अमरीकी मिजाइल हमले में चार जना शहीद, पंज जख्मी। ईरानी फौज पारा जवाबी कार्रवाई में बहरेन, उर्दन ए कोवैत में बारन के जखीरन फौजी राजगान ए अमरीकी जहाजन के हैंगर के निशानो बणाने की दावा। इराक के अरबी हवाई अड्डे से भी ईरानी ड्रोन हमलो। पासदारन इनकलाब अमरीका के अडा दियण ते बरतानिया के वार्निंग डींदे चयो त ईरान खिलाफ इस्तेमाल थींदड़ हर फौजी अडो ईरान जो हदफ हूंदो। ॿिए पासे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी ईरान के वॾी फौजी ऑपरेशन जी धमकी। आमने एयरमोस में तजारती जहाज़नि ते हमले में ईरान जे ज़ब्त थियल असासनि मां नुक़सान भरण जो ऐलान। ईरानी परॾेही वज़ीर असासनि खे अदायगी लाइ ज़ब्त करणु ख़तरनाक ऐं चिड़ ॾियारींदड़ मिसाल क़रार ॾेई छॾियो।

0: कश्मीर के कश्मोर ऐं मीरपुर के मीरपुर खास न समझो। बिलावल बरखुरदार, मुंहिंजी ॻाल्हि खे ख़राब न समझो। सियासत में जुमलनि जी ॾे वठि थींदी रहंदी आहे। सियासी पार्टियुनि में लड़ाई ऐं मारकुट न पर तनक़ीद थियणु घुरिजे। नवाज़ लीग जे सदर जो आज़ाद कश्मीर जे इलाइक़े मीरपुर में चूंड जलसे खे ख़िताब। नवाज़ शरीफ़ चयो त मरी खां मुज़फ़राबाद ताईं एक्सप्रेस वे ठाहियो वेंदो। मरियम नवाज़ मीरपुर में 10 मोबाइल इस्पतालूं आणे रही आहे। शहबाज शरीफ खे चवंदुसि त मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आहे, जेके इलेक्ट्रिक बसूं लाहौर में हली रहियूं आहिनि। मरियम नवाज़ उहे बसूं कश्मीर आणे रही आहे। पंजाब जी वज़ीर आला जा जलसे खे ख़िताब में पीपल्स पार्टी ते तनक़ीदी वार। मरियम नवाज़ चयो त मुखालफ़नि जूं जंगू ॾकी रहियूं आहिनि। मुखालफ़नि जूं डोड़ूं ॿुधाए रहियूं आहिनि त नवाज़ लीग आज़ाद कश्मीर जे अवाम जी हिमायत सां खटी वई आहे। बिलावल भुट्टो जो नालो खणण बिना मरियम नवाज़ चयो त मुखालफ़ चई रहियो हो त असांजे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत हुई त छा कयो। आज़ाद कश्मीर में थोरे अरसे खां हुकूमत हुई, उन बावजूदु एतिरा मनसूबा आंदा। 5 सालनि में कश्मीर पंजाब खां बि अॻिते वञी सघे थो। पाकिस्तान अंदरि दहशतगर्द कार्रवाइनि में भारत जा हथ आहिनि। अफ़गान तालिबान रिजीम दहशतगर्दनि खे रोकण में नाकाम थी चुकी आहे। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में असांजा 90,000 माण्हू शहीद थी चुका आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं मस्तोंग में सेशन जज खे क़तलु कयो वियो। बलोचिस्तान जे माण्हुनि जूं क़ुर्बानियूं ज़ाया न थींदियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो तक़रीब खे ख़िताब। वज़ीर आज़म चयो त मुल्क मां दहशतगर्दी जो मुकमिल ख़ात्मो थी चुको हो। हिकु साज़िश तहत दहशतगर्दी वापसि आई आहे। सभिनी खे गॾिजी मुक़ाबिलो करणो पवंदो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
3: सुनते रहो जीए एफएम 90.8।